0: हाय बेबी।
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रही मतलब?
1: मीन्स आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट।
0: आई लव यू।
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।